पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है। एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे,
सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर

आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या पूरा चलनी है, चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है। गुरुदेव शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो। तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे हैं। कैसे, बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहे रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं।
इन्हीं चरणों का आश्रय लिया।

हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितान नितराम कुरवंत कुरवंत मां, गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगादि विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारे वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, सावधान हो जाओ।
तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा ऐ मति मंद हित कुशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में विश्व में कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।

0: गुरु, यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे विलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाए जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं? ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे, उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं और सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो, अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवीए से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं, तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें? और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद
0: डॉक्टर।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं, और जो आपने परफेक्ट

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एजुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बापा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीन्स जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
0: कई बार मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजलि। और देखिए, लेकर आ गई हूँ शो अंजलि ऑन एयर। अब रोज सुबह आपको 7 से 11 यहाँ मिलने वाली हूँ, आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और अपना 1 घंटा एक्स्ट्रा आने वाली हूँ, यानी कि अब आप मुझे सुनेंगे सुबह 7 से 11 बजे तक। वैसे मैंने अक्सर मंडे वाले दिन को लेकर ना एक बात नोटिस की है, तो आज सोचा क्यों ना वो बात आपके साथ शेयर की जाए। अक्सर मुझे संडे रात को 11 बजे तक नींद ही नहीं आती, और फिर जब सुबह 6 बजने वाले होते हैं ना मंडे वाले दिन, तो मेरी आंखें नहीं खुलती, मन करता है बस 5 मिनट और सो जाऊं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है? तो भाई जाना कहाँ है? रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर आना है, वहां पर आपको बताना है कि आप क्या फील करते हो मंडे वाले दिन को लेकर। तो चलिए, मंडे हो गया है स्टार्ट, मंडे को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाएंगे। अगले 4 घंटे हम बात करेंगे फरीदाबाद सिटी अपडेट्स, वेदर, बॉलीवुड, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इवन साइबर अलर्ट तक। तो बहुत कुछ है आज मेरे पास, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए।

0: आप रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिये के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक। तो अंशली आ गई है ऑन एयर और बात करने वाले हैं आज साइबर शील्ड के बारे में। और अगर देखा जाए ना, आजकल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एआई भी आपकी आवाज में बात कर सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट। और इसी वजह से ना एक नया साइबर स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे भी जब मैं अपना शो लेकर आती हूँ वहाँ मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मार्केट में ना कितने सारे स्कैम आ गए। तो चलिए फिर आज डिकोड कर लेते हैं एक और स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारी आवाज निकाल कर बात करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। वो एक बार जरूर सोचिए, अचानक से आपके व्हाट्सएप या फोन पर ना किसी अपने का कॉल आए और बिल्कुल उसी आवाज में बात करे जैसे कि आपका कोई रिलेटिव बोल रहा हो, यार इमरजेंसी है अभी पैसे भेज दो। तो घबराहट में आप क्या करेंगे, आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला सच में किसी इमरजेंसी में। बस जैसी गलती आप करने वाले थे ऐसी ही गलती से साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार ठहर कर जरूर सोचिएगा कि हो सकता है ये आपकी अपने की आवाज होगी ना, बिकॉज अब एआई से क्लोन की गई आवाजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह के साइबर स्कैम से बचने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस और साइबर एजेंसीज भी लोगों को इस तरह की एआई वॉइस स्कैम से अलर्ट कर चुकी है। इसलिए आज का साइबर मंत्र बहुत सिंपल सा है, सुनो सबकी लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अगर कभी भी आपको पैसे मांगने वाली इमरजेंसी कॉल या कोई भी वॉइस नोट आए तो पहले उस इंसान को कॉल करके कंफर्म जरूर कीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसी के साथ सिर्फ सेफ नहीं स्मार्ट रहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक क्लिक ही काफी होता है। इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यार सा ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm-up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, जब अंजलि ऑन एयर होती है तो रेडियो महारानी पर ना बातचीत बहुत ज्यादा होती है, और उसी बातचीत के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आज सोशल स्क्रोल, यानी कि यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक स्टोरी के बारे में जो इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर ना एक लेडी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया कि फ्राइडे शाम ऑफिस बंद होने से सिर्फ 5 मिनट पहले बॉस ने उन्हें एक एनवलप दी। एनवलप लेते ही ना उन्हें लगा शायद उनकी जॉब चली गई, और वो घंटों तक ना उस एनवलप को देखती रही, उनकी हिम्मत ही नहीं उसे ओपन करने की। जैसे ही उन्होंने एनवलप खोला तो पता चला कि अंदर टर्मिनेशन लेटर ही नहीं है, बल्कि उसमें उनके पिछले 4 साल के अनक्लेम्ड ओवर टाइम का पूरा हिसाब था। और इतना ही नहीं, साथ में था बॉस का एक हैंड रिटन नोट, यू नेवर क्लेम्ड अ सिंगल आवर, वी नोटिस्ड। बस फिर क्या था, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो आज की स्टोरी ना हमें ये बता रही है कि सडन इंसिडेंट जरूरी नहीं शॉक्ड हो, कुछ इंसिडेंट हमें सरप्राइजेस भी देकर जाते हैं, और जितना हम हार्ड वर्क करते हैं ना ये हमें जरूर रिटर्न में मिलता है। तो माय डियर लिसनर्स, मंडे मूड को और भी ज्यादा लाइट बनाने के लिए ये स्टोरी मैं लेकर आई थी। तो मेहनत यूं ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए शानदार सा ट्रैक जो है आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी एंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहां थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूं गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो है अंजलि ऑन एयर। तो भाई देखिए, अंजलि ऑन एयर हो गई है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आना तो बनता है ना। सबसे पहले ये बताइए, क्या कभी आपने आरएसी टिकट पर ट्रेवल किया है? अगर किया है ना तो ये आपको जरूर पता होगा कि एक ही बर्थ पर दो लोगों को वेट करना पड़ता है जब तक टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती। दो लोगों का वेट करना समझ आता है, लेकिन अब इन दो लोगों में ब्लैंकेट कितने, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। तो भाई इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं लेकर आ गई हूँ, और अपडेट ये है कि दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इंडियन रेलवे पर 25,000 का फाइन लगाया। और फाइन लगाने का रीजन ये है, आरएसी में ट्रेवल कर रहे दो अलग अलग पैसेंजर को सिर्फ एक ही ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया। फिर क्या था, पैसेंजर ने कर दी कंप्लेंट और बताया कि एक ब्लैंकेट की वजह से कितना फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ है। तभी यहाँ पर कंज्यूमर कमीशन ने ये बताया कि आरएसी के जितने पैसेंजर्स होते हैं वो लोग भी बेडरोल फैसिलिटी के पूरे पूरे हकदार होते हैं। तो देखिए, आज का अपडेट आपके लिए है। अगर आप भी कभी आरएसी टिकट वाली जगह पर फंस जाए ना, तो अपने राइट्स हमेशा याद रखिएगा। और आज की स्टोरी ना हमें एक बात जरूर समझाती है, अपने पैसेंजर राइट्स जानना उतना ही जरूरी है जितना कि टिकट बुक करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सर्विस में कमी हो ना तो आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर होती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के एक अलग कोने में जाने का। तो अब आ ही गए हैं फरीदाबाद से निकलकर देश से बाहर, तो चलिए जान ही लेते हैं कि किस्मत कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इटली लेकर चलती हूँ मैं आपको। इटली से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर एक लेडी ने करीब 11 करोड़ की लॉटरी जीती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जब लॉटरी जीती ना, उस लेडी ने कर दी एक गलती ये थी कि उन्होंने अनजाने में ना विनिंग लॉटरी टिकट को कचरे में डाल दिया। और जब उन्हें पता चला कि वही टिकट विनिंग टिकट था, अब सोचिए कि हुआ क्या होगा, वापस कैसे आया होगा ये लॉटरी टिकट, होना क्या था। कहते हैं ना, जब इंसान को अगर वो चीज मिल जाए जो उसने एक्सपेक्ट ना की हो, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही इन्होंने भी किया। जितने भी सफाई कर्मी थे ना, उन सबकी मदद से लगभग 6 टन कचरे में जाकर टिकट ढूंढना शुरू किया। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यहाँ पर इनकी भी हार नहीं हुई। आखिरकार इन्होंने वो टिकट ढूंढ ही लिया, और टिकट मिलते ही ना ये जो इनकी खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो देखा, यहाँ पर इंसिडेंट हमें एक चीज तो जरूर सिखा कर जाती है। तो भाई, सीख सिर्फ इतनी सी है, कभी भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी रिसिप्ट कभी भी कूड़े में ना फेंके बिना चेक किए। हमेशा चेक करें, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए ना थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, टाइकवांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

चलिए फिर फटाफट से आ जाइए इटली से सीधा फरीदाबाद। अभी इटली की बात की थी, अब बात करते हैं फरीदाबाद में बिजनेस बस की। बिजनेस बस में ना मैं आपके लिए कहानी लेकर आई, और कहानी हमें ये बताती है कि एक छोटा सा आइडिया ना एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, और अगर उस ब्रांड को आप ईमानदारी से निभाए ना तो पूरे देश भर में फेमस हो सकता है। तो भाई देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे होम ग्रोन स्टार्टअप की जिसका नाम था द होल ट्रूथ फूड्स, यानी कि एक इंडियन स्टार्टअप जिसने पैक्ड फूड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस ब्रांड का फोकस है नो हिडन इंग्रेडिएंट्स, यानी प्रोडक्ट पर जो लिखा है वही अंदर है। और आज ये स्टार्टअप्स प्रोटीन बार्स, पीनट बटर और हेल्दी स्नैक्स के लिए देश भर में काफी पॉपुलर हो चुका है। तो देखा, ये कहानी हमें ये बताती है कभी कभी सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया सिर्फ ईमानदारी और क्वालिटी पर होता है। तो भाई अगर आप भी कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं ना, और होम ग्रोन बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने, और फिर देखेगा जो आपका छोटा सा आइडिया है आज एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

देखो देखो वो आ गया। कौन आ गया? आ गया सोशल स्यापा। बिजनेस तो कर लिया लेकिन आज का सोशल स्यापा का क्या? अंजलि ऑन एयर आए और सोशल स्यापा ना लाए, ये कैसे हो सकता है? और देखो अगर मैं आज के सोशल स्यापा की बात करूँ तो सीधा इंटरनेट से उठकर आप तक पहुँच ही जाए। तो देखिए अगर आज के स्यापे की मैं बात करूँ तो ग्वालियर से आया आज का स्यापा, बहुत दूर से आया। अब इतने दूर से आया तो कैसे आया होगा बाइक पर बैठकर? देखिए अगर बाइक की बात हो ही रही है तो ये बताइए कि एक बाइक पर कितने लोग सही लगते हैं बैठना? एक या दो, हार्डली। लेकिन यहाँ हमने कितने लोगों को देखा? एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 लोग एक बाइक पर सवार होकर गेड़िया लगा रहे थे। अब बात गेड़ियों तक नहीं थी, धीरे धीरे खतरों के खिलाड़ी भी शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ शुरू कर दिया स्टंट करना। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया ना तो सोशल मीडिया पे बहुत ही धमाल मच गया, और ये धमाल मचाने के लिए ना हमारी ट्रैफिक पुलिस बेस में आ गई। और जब ट्रैफिक पुलिस ने इस बाइक का नंबर देखा ना तो फिर क्या था, फिर हो गया मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट, और इस एक्ट के तहत 6,500 का चालान काट दिया गया है। तो भाई देखिए अगर आप भी वायरल होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्टंट करना चाह रहे हैं ना तो इस मोटर व्हीकल एक्ट को जरूर याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं जब ये एक्ट लगता है ना तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपके चाचा काम नहीं आते। यानी कि कहते हैं ना कि मेरी चाचा से बात कर लो, मेरे ताऊ जी से बात कर लो, मेरे अंकल से बात कर लो, आप जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। तो यहाँ पर ना वो सारी चीजें काम नहीं आती। तो अगर आपको इस चालान से बचना है ना तो भाई इस तरह का कोई भी स्टंट मत कीजिएगा। सेफ्टी पहले, सोशल मीडिया बाद में, ये हमेशा याद रखिएगा, और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखिएगा। और साथ ही एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

कितनी बार समझाया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में इतना मत खो जाओ कि खुद की जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी की वजह से हुआ है। तो भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 17 साल की एक लड़की सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो बैठी और हाइट से गिरकर सीधा झाड़ियों में जा फंसी। और जब बात कर ही रहे हैं ना पहाड़ों की, तो आपको पता है पहाड़ों पर क्या मिलता है? पहाड़ों पर मिलती है सिर्फ रिवर। तो भाई यहाँ पर अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से सेफली रेस्क्यू किया गया। तो यहाँ पर इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मोटिव इतना सा है कि सेल्फी लेने के लिए ना सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सेल्फी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो सेल्फी मत लीजिए, सिंपल। और सेल्फी लेने के लिए यार बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहां जाके सेल्फी ले सकते हैं ना, अपनी लाइफ को इस तरह से डेंजर में डालकर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए। दिस इज नॉट डन। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहे रेडियो 89.6 FM, म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है?
1: नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा?
0: सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जो बिल्कुल आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है, और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूँ तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने के लिए 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेन और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हाँ जी, डू यू नो से अब वक्त हो गया सीधा आने का डिड यू नो पर। जब बात कर ही रहे हैं डिड यू नो की, तो क्यों ना आपको सरप्राइज कर ही दें, और सरप्राइज कम शॉकिंग थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसे जानने के बाद ना आपका सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन हुआ, क्या सच में ऐसा था? तो देखिए, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको पता है जो हम बनाना खाते हैं वो एक्चुअल में टेक्निकली एक बेरी है, हाँ, और जो स्ट्रॉबेरी है वो बेरी नहीं है। देखा, हो गए ना कंफ्यूज, कर दिया ना मैंने ब्रेन रोट आपको। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। और ये सुनने में ना थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन बोटैनी के हिसाब से बनाना बेरी की कैटेगरी में आता है, जबकि स्ट्रॉबेरी बेरीज की कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब नाम पर मत जाइएगा, साइंस की डेफिनेशन कुछ और ही कहती है, और इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का फैक्ट मैंने आपको बता भी दिया और आपको ब्रेन रोट कर भी दिया। कल फिर से आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर, लेकिन तब तक के लिए बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी है, और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कॉलिंग।
1: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशली इन द हाउस। और चलिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और फिलहाल वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती चलाने का। और देखिए भाई, जब अंजलि ऑन एयर होती है ना, तो अपने साथ अंजलि वाली वाइब जरूर लेकर आती है। और अब इस वाइब की बात करें तो इसका नाम है फरीदाबाद की पहेली। तो भाई देखते हैं आज कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो पहेली के साथ आ गई हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने और शॉपिंग करने आते हैं। मेरी पहचान सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया तक है। रंग, कला, हैंडक्राफ्ट्स और कल्चर सब कुछ एक ही जगह मिलता है, बताइए मैं हूँ कौन? चलिए भाई, इतना टफ नहीं करते हैं, आपके लिए ना एक हिंट छोड़ कर जाती हूँ। और हिंट ये है कि मेरा नाम एक झील से जुड़ा हुआ है। सो माय डियर लिसनर्स, आपको पता है ना आपको जवाब कहाँ देना है। तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और इस पहेली का जवाब मैं रिवील करूंगी आपसे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलता है ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए, तो एनिमल इस हफ्ते की

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। दिमाग की बत्ती जलाने का काम मैंने किया था, यानी कि फरीदाबाद की पहेली लेकर आई थी और हिंट भी देकर गई थी और बहुत सारे जवाब हमें मिले। कुछ जवाब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, लेकिन फाइनली हमें फरीदाबाद की पहेली का सही जवाब मिल गया है। तो चलिए पहले आपको जवाब सुना देते हैं।
1: हेलो अंजलि, जो तुमने अभी पहेली पूछी है तो इस पहेली का आंसर है सुरचूर। जहाँ हम सब जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना, घूमना, खाना पीना और हर साल इंतजार रहता है सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही कहा, जवाब है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी याददाश्त है आपकी और इसी सही जवाब के लिए आपके लिए बनती है ये जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मॉनिक और रेडियो महारानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, अपना प्यार देते रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

है तो हिट है फिट बॉडी फिट माइंड और फिट फरीदाबाद। हाँ जी फरीदाबाद वालों, फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गए हूँ, यानी कि अब वक्त हो गया आपको फिट करने का। तो चलिए भाई, पूरा फरीदाबाद मिलकर होता है फिट फरीदाबाद। तो भाई आज का हेल्थ मंत्र है ब्रेन स्ट्रोक से बचा, यानी कि डॉक्टर्स के मुताबिक स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कुछ हेल्दी हैबिट्स को रोज की लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। और बस ये हैबिट्स जब आप डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करने लग जाते हैं ना, फिर आपको खुद भी पता नहीं लगता कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको करना क्या है, आपको अपना ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करना है, और साथ ही थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं, बार बार चक्कर है या फिर हार्ट बीट इरेगुलर लगे तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, बिकॉज हेल्दी हैबिट्स ही हेल्दी फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब बस इस मंत्र को याद रखना है, और आज का फिटनेस वाला फंडा यही था कि खुद को किस तरह से प्रायोरिटी बनाना है। तो भाई आज ही खुद को प्रायोरिटी बनाइए और लंच बॉक्स में ना कुछ हेल्दी लेकर जाइए। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मल्टीप्लेक्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: Get ready, Faridabad. Because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
2: Glorix Entertainment present Glorix Garba Night. 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से
1: वेन्यू पार्टनर इमेंस रेजिडेंसी होटल सेक्टर 28 फरीदाबाद रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6 एफएम
2: सपोर्टिंग पार्टनर्स आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद स्टूडियो 1 डांस एंड फिटनेस
1: राइट पार्टनर वोक वुमेन ऑक्यूपाइड कार्स फोर्थ पार्टनर नॉट आउट हेल्थ पार्टनर अजयवेदा सिक्योरिटी पार्टनर बिग पैंथर
2: डीजे ढोल डांडिया नॉनस्टॉप गरबा सो गैदर योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर गरबा गैंग
1: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है फुल ऑन गरबा नाइट
3: चमा चमना चाचे थमादम ढोल बजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा
2: टिकट्स अवेलेबल हैं ऑल इवेंट्स की साइट पे या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9311304040 पर
1: ग्लोरिक गरबा नाइट 2026 इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग डीजे की बीट और ढोल का धमाल सब एक साथ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। तो देखिए भाई, स्वागत मैंने आपका फिर से कर दिया है, और दोबारा से स्वागत इसलिए किया है क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आपके लिए फरीदाबाद की कुछ बातें लेकर। तो चलिए इम्पोर्टेंट बातों पर अब नजर डाल ही लेते हैं। NIT फरीदाबाद की कई एरियाज में पीने के पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान सामने आ गया है। तो भाई NIT वालों, अब तक आपको पानी की प्रॉब्लम होती थी ना, ये प्रॉब्लम अब आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, बिकॉज एक नया प्लान आया। और प्लान ये है, 250 करोड़ का बूस्टर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जिसका एम है करीब 5 लाख लोगों तक पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करना, और इसके साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज है फरीदाबाद के लिए, स्पेशली NIT एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है आपके लिए। और बस अब देखना ये है कि कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नजर आता है हमें। जब तक ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक आप हमें बता सकते हैं NIT या फिर आसपास के एरिया में किस जगह पर वाटर सप्लाई का क्या हाल है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ड्राइव, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितिश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। रेगुलर रनिंग ओवरऑल बॉडी में सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी बेनिफिट के अलावा मसल्स, जॉइंट और आपके जो बोन्स हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि रनिंग एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या, धैर्य और डिटर्मिनेशन से जुड़ा है। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट के टाइम में जी रहे हैं। करियर में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स, हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। तो क्या पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हम आज के टाइम की रियल स्ट्रेंथ मान सकते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डेवलप करें?
1: आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें हर चीज तुरंत चाहिए, फटाफट सफलता, फटाफट रिश्ते, फटाफट परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का पाठ पढ़ाती है। पेशेंस कोई मजबूरी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। जब आप रोज बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो वह कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसे अपनी डेली लाइफ में उतारने का बस एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदमों से प्यार करो और परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दो, प्रोसेस पर ध्यान दो।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

0: तो चलिए फिर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आज मैं टिफिन में क्या लाई हूँ, क्योंकि यार ऑफिस पहुँचते ना सबसे पहला सवाल काम का नहीं बल्कि यही होता है कि टिफिन में बॉस क्या लेकर आए हो। तो अगर मैं आज अपने टिफिन की बात करूँ ना, तो मैं तो आज अपने टिफिन में आलू का पराठा और दही लेकर आई हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आखिर आपके टिफिन में आज क्या है, अगर राजमा चावल हो ना तो भेज भी दीजिएगा। खैर देखिए, ऑफिस जाने का ना सबसे प्यारा मोमेंट जो मुझे लगता है वो है कि अपना टिफिन शेयर करना, क्योंकि जब हम टिफिन शेयर करते हैं ना तो बहुत सारी गॉसिप शेयर करने को मिलती है। मेमोरीज तो देखो है ही, लेकिन जो गॉसिप मिलती है ना, जिसे टी कहा जाता है, जेन ज़ीज़ जिसे टी कहते हैं, और आजकल ना जेन ज़ीज़ बड़े ट्रेंड में है। खैर मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आज टिफिन में लेकर क्या आए हैं आप, लेकिन आपको पता है ना कहाँ जाना है। बताने के लिए आपको इंस्टाग्राम के पेज पर आना है, रेडियो महारानी का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर जाइए, वॉइस मैसेज भेजिए। फिर जब कल अंजलि ऑन एयर होगी ना तो बताएगी कि आपके टिफिन में क्या था। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर अंजलि ऑन एयर। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है जाने का, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चुल।
1: एक सिंपल सी लाइन मैंने कहीं रीड करी थी जिसके साथ आज शो की शुरुआत हम करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। एम्पावर दी वुमेन, एम्पावर दी वर्ल्ड, ये एक सिंपल सी लाइन सुनने में है, बट इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो एक अलग फीलिंग आने वाली है। एम्पावर दी वुमेन मतलब अगर आप एक वुमेन को एम्पावरफुल बना देते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि वो सशक्त हो, अपने काम करने के लिए खुद आगे बढ़ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट एक वुमेन आप बना देते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर देते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ इनहेंस कर दे सकते हैं। ये पावर होती है एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए आप एक बदलाव लाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में और आपके स्टेट में आ रहा है, इधर हर जगह एक चेंज, एक रेवोल्यूशन आने की शुरुआत हो चुकी है, अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को आगे बढ़ाने की सोच भी रख ली है दिमाग में। यू विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM
2: द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु बिगर बेटर बोल्डर।

0: get ready Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Glorix Entertainment present Glorix Garba Night, 17 October शाम 6 बजे से.
0: Venue partner Immense Residency Hotel, Sector 28 Faridabad. Radio partner Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners Art of Living Faridabad, Studio One Dance and Fitness.
0: Right partner Vogue, Women Occupied Cars. Sport partner Nod Out. Health partner Ajaveda. Security partner Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: चमा चम नाचे, थमा दम ढोल बजे, non-stop हल्ला मचेगा.
1: Tickets available हैं all events की साइट पे, या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, DJ की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ.

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम, ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए? मैडम, बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का, अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे। तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही है, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

She have changed the world or she have explored the world for upcoming girls. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अक्सर ये होता है ना, एक वुमेन एक नई फील्ड एक्सप्लोर करती है और उसके बाद बहुत सारी वुमेन उसे देख के उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी वुमेन है उन्होंने करके दिखाया था, जो आज हमारे साथ शी हैव चेंज द वर्ल्ड में है। मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी मैम की। कभी पुलिस की जो वर्दी है ना, वो सिर्फ पुरुषों का ही सिंबल माना जाता था या उनकी ही वैकेंसी वहां पर आती थी। फिर आई किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। 1972 में उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद इससे पहले भारत में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अपनी ईमानदारी, डिसिप्लिन और निडर अंदाज से उन्होंने पुलिस को सर्व किया और एक नई पहचान बना ली। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके जेल सुधारने तक उनके कई फैसलों ने सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव ला दिए। और किरण बेदी सिर्फ एक कानून की रक्षक नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं का वो विश्वास है, वो हिम्मत है और वो मेहनत करते रहने के पीछे की मिसाल है। और ये कहानी उन सभी लेडीज को मोटिवेट करती है जो सोचती हैं कि इस फील्ड में वुमेन जाके क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर पाएगी। तो किरण बेदी ने कहा है, कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, यानी नारी नहीं कर सकती। नारी ठान ले तो नारी सब कर सकती है, इसीलिए वो है नारी नंबर 1। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

बाबू वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक बिहारी सौ पे भारी, पर ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई मेरे को लग रहा है अपने प्लानिंग। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की उस महिला की जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैडम ये क्या हरकत थी और क्या जरूरत थी आपको ये चीज करने की? आपको मालूम है बिहार एक ड्राई स्टेट है जहां पर लीगली आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर बैन करी जा चुकी है और बहुत सालों से बैन है। तो ये क्या तरीका था, फर्स्ट क्लास एसी की आपने ट्रेन कराई, टिकट कराई, उसके बाद उसमें आप दो दो अटैचियां भर के लेके जा रही है, वहां शक हो गई पुलिस को कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु, इनकी जो ड्रेस है वो तो मैच कर रही है बट जो इनका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी, उनको रोका, तो बैग खोला तो बैग के अंदर से एक बोतल दो बोतल क्या हजारों बोतलें निकल गई। भैया ये क्या क्या करने के मूड से आप लेके जा रही, ब्लैक में सप्लाई करने के मूड में लेके जा रही थी या खुद इतना कंज्यूम करना चाह रही थी, ये नहीं समझ आ रहा। बट वहां जो आप एटीट्यूड से खड़ी हैं वीडियो में, पकड़ने के बाद भी फोन मिला रही है कि रुको अभी कोई छुड़वा देगा, तो मैडम पुलिस है वो, और आपको इलीगल चीज करते हुए पकड़ा गया है जो बिहार के अंदर एटलीस्ट लीगल नहीं है, बाकी स्टेट में लीगल होगी। और ऐसे केस बिहार से क्यों आते हैं जब वहां पर बैन है, तो बिहार वालों को ऐसा क्या है भाई, बिहार के बाहर जाओ अगर कुछ आपको ऐसा कंज्यूम भी करना है तो, उस स्टेट के अंदर ले जाने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो। इससे पहले भी बहुत बार पकड़े गए, फिर से पकड़े गए, आगे की कहानी भी नहीं पता फिर कब पकड़ी जाए। बट ये जो एक फीमेल के थ्रू पकड़े गए ये मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग था यार। मेल तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो ब्लैक कर रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, बट फीमेल माना इक्वालिटी भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना, बट ऐसे भी नहीं मिला के चलना है यार कि इन चीजों में आप बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या, धैर्य और डिटर्मिनेशन से जुड़ा है। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट के टाइम में जी रहे हैं। करियर में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स, हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। तो क्या पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हम आज के टाइम की रियल स्ट्रेंथ मान सकते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डेवलप करें?
1: आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें हर चीज तुरंत चाहिए, फटाफट सफलता, फटाफट रिश्ते, फटाफट परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का पाठ पढ़ाती है। पेशेंस कोई मजबूरी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। जब आप रोज बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो वह कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसे अपनी डेली लाइफ में उतारने का बस एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदमों से प्यार करो और परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दो, प्रोसेस पर ध्यान दो।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

आज मैं एक ऐसे लीगल राइट की बात वुमेन्स की करने वाला हूँ जो शायद मुझे ही आज से पहले नहीं पता थी, ये मुझे आज पहली बार पता चली है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब इसका मतलब क्या है? मुफ्त कानून मदद का अधिकार। अब आप सोच रहे हो ना, मुफ्त कानून मदद का अधिकार, ये सब क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक भारत में रहने वाली महिला हैं और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, वकील की फीस देने का पैसा नहीं है, कोर्ट के खर्चे उठाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास ये राइट यूज करने का अधिकार है, जो राइट बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, जिसके तहत ये कहा जाता है अगर आपके पास अपने वकील को देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट या लीगल चीजों के लिए पैसा नहीं है तो आप यूज कर सकती हैं फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी एक लीगल केस को लड़ने के लिए या उसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ये राइट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। कोर्ट फीस में और कुछ नए कानून जो खर्चे हैं उनमें आपकी मदद की जाएगी, पूरी तरह से फ्री नहीं है बट आपकी हेल्प की जाएगी, कितना कम से कम में वो चीज आपका करवाया जा सकता है। तो ये राइट सिर्फ एक महिला के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA, अदरवाइज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA के अंदर आती है। आप वहां पर जाके मदद मांग सकते हैं ऐसे किसी केस में जब आप सक्षम नहीं हैं कोर्ट फीस भरने के या फिर अपने किसी भी वकील की फीस भरने में, तब ही आप मदद ले सकते हैं। पहले आपको वो प्रूव करना होगा कि आप सक्षम नहीं हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4, गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। साथ आइए डांडिया के बीच पर, झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवार प्रेजेंस डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।

ये बात हम कभी नोटिस ही नहीं करते है ना, और इस साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है मर्द के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। आखिर चाहिए क्या एक मर्द को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए, उसे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना उसे महंगे गिफ्ट चाहिए, ना उसे शायद आपसे बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए। हो सके तो बस उसको इतना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसे बोले ना तुम मर्द हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तो आप बस उसके कंधे पे हाथ रख के आराम से उससे ये पूछे, आज थक गए होगे, कोई बात तो नहीं, बताओ अगर कुछ बताना चाह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और अगर वो पलट के आपको बता दे तो वही आपकी पॉजिटिव जीत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो शायद बाहर दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, बट उसने आपको चुना है वो शेयर करने के लिए, तो आप उसकी लाइफ का वो खास पार्ट हो। और अगर आप भी नहीं पूछ रहे हो तो शायद वो किसी को वो बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक मर्द को क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसे बता सके, और वो खुद से आगे नहीं बताएगा तो प्यार से पूछने वाला इंसान सबसे पहला उसको चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, तो 27 तारीख को आप आ रहे हो ना सूरज कुंड मेला ग्राउंड में? अरे अभी तक प्लान नहीं बना है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और प्लान नहीं बनाया तो भैया अब बना लो, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 27 तारीख को होने वाली है। सूरज कुंड मेला ग्राउंड से ये बिगिन होगी और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले तो यही बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी कर लो www.halfmarathon.in पे जाके, और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे @RJ तुषार के नाम से, वहां आके पूछ लेना। और ये जो मैराथन है ये 3 फेज में होने वाली है। एक होने वाली है 21.1 किलोमीटर, फिर होने वाली है 10 किलोमीटर, फिर होने वाली है 5 किलोमीटर। तो ये 3 तरह की होने वाली है, आप जिसमें बेस्ट आपको लग रहा है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर वाली फन रन होने वाली है जो आपके लिए बहुत हैक्टिक नहीं होने वाली है, और सारे जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मैच करने वाली है, प्रोफेशनल लेवल मैच करने वाली है, जिसमें टाइम वगैरह सब वैसे ही नोट करा जाएगा। प्लस प्राइज मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस रेस का होने वाला है, और इसके पीछे का थीम ही है ना, एक हेल्थ के लिए आपके कदम उठाने का टाइम आ चुका है। और नशा मुक्त हरियाणा जो मेन मोटिव है इस पूरी मैराथन का, वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। तो 27 तारीख इस मैराथन का पार्ट बनना 1% भी ना भूलिए, हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से बिगिन हो जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल, एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बहुत सारे पंजाबी गानों में, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में हमने ये अक्सर सुना है, मैनू जुत्ती ले दे, जुत्ती तेरी चमक दी, जुत्ती तेनू फब दी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बट ये जुत्ती की हिस्ट्री क्या है? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये जो फीमेल जुत्ती है ना, इसकी कहानी भारत की परंपरा से जुड़ी हुई है। जुत्ती का जन्म लगभग 400 साल पुराना है, मुगल काल में इसकी शुरुआत करी गई थी, तब राजाओं महाराजाओं के शाही पोशाक का ये पार्ट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये और सुंदर बनती गई और धीरे धीरे पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर भारत में इसका जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली गई, वहां पर लोग इसे और ज्यादा स्केल पर पहनने लगे, अलग अलग फैशन सेंस के साथ पहनने लगे। पहली की जो जुत्ती होती थी ना वो चांदी की होती थी, हाथ से करी गई एम्ब्रॉयडरी की होती थी, और में धीरे धीरे चेंज करते हुए इसे नॉर्मल जुत्ती का जो आज हम रूप देख रहे हैं उसमें लेके आए थे। और जुत्ती की सबसे खास बात होती है उसके जरी का काम, मोती का काम, मिरर्स का काम, जो उस जुत्ती के फैशन को इनहेंस कर देते हैं। आज फीमेल जुत्ती की परंपरा फैशन का एक परफेक्ट मेल हो चुकी है। जब जब उन्हें एथनिक कुछ पहनना है या मॉडर्न आउटफिट में एथनिक का कुछ टच देना है तो वो जुत्ती का यूज करती हैं, और पंजाबी कल्चर में जुत्ती का एक अलग ट्रेडिशन है और एक अलग सा रिवाज है। अगर आपने जुत्ती पंजाब में पहन ली है या पंजाबी जुत्ती पहन ली है तो वो रौब आपका वहां पर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आज मेरा लर्निंग सेशन है, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ, जितना सीख सकता हूँ ना, वही मेरी बेस्ट लर्निंग होने वाली है। डॉक्टर काची नागिया आज हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करा है, प्लस इसके साथ साथ फैशन फील्ड से बहुत लंबे समय तक एसोसिएट रही थी। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू तुषार जी हमें बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए, ग्रैटिट्यूड।
0: मैम ये मेरे लिए एक न्यू चांस होने वाला है, क्योंकि आपकी जब मैंने ऐसे जर्नी के बारे में जाना, फैशन डिजाइनिंग, फैशन फील्ड से रहने के बाद फिर आपने वेदिक टैरो एस्ट्रोलॉजी इसमें स्विच लिया, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है पूरी आज जर्नी में, कि मैं दो चीजों के बारे में जान सकता हूँ, एक तो फैशन वाली चीज के बारे में भी और टैरो कार्ड और एस्ट्रो के बारे में भी। बट स्टार्ट करने के लिए मैं यही जानना चाहता हूँ, ये फैशन से टैरो वाली जर्नी, ये स्विच कैसे आया?
1: मैं शुरू से ही एज एन बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। ये ना मुझे, मतलब मैं शायद 10th में 11th में ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मेरा एक फैक्ट्री है और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे बैग लेके जाती होती थी कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रही हूँ। और मेरी मॉम कभी कभी हंसती थी बिकॉज ये क्या है ना। फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, फैशन की, देन आई गॉट मैरिड और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया, आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, मेरा अपना एक ब्रांड है एंड एवरीथिंग वॉज गुड, लाइक यू नो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद रिलायंस थ्रू एंड थ्रू, यू नो, बिजनेस पर्सन। फिर 2018, मुझे टैरो में हमेशा इंटरेस्ट था, पर 2018 मैं किसी से करवाती होती थी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछ लेती थी। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। 2018 मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो उन्होंने एक पंडित जी के पास, पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए बने हो। तो तब मुझे लगता था एज अ बिजनेस पर्सन हीलिंग कहाँ यार, हम तो बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं। और जब मॉम की डेथ हुई तो ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए 3 महीने सिर्फ एक पंडित जी के पास बैठ गई, क्योंकि मेरा मन अशांत था, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्या भवन, आई डिड टैरो में PhD, आई डिड हीलिंग रेखी कोर्सेस, सो एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: PhD इन टैरो। मैम ये जो आपने डिफरेंस बताया है और दोनों के बीच का रिलेशन बताया और कैसे आपने जर्नी स्विच करी बताया है, मेरे को लगता है बहुत सारी फीमेल यहाँ पर मोटिवेट होने वाली हैं कि आपको रुकना नहीं, आपको अपने चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको ढूंढना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, और ऐसी ही बेस्ट चीजें आगे हम आपको और गाइड करेंगे कुछ गानों के बाद, ओनली ऑन रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: Get ready, Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Glorix Entertainment present Glorix Garba Night, 17 October, Sham 6 baje se.
0: Venue partner, Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner, Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners, Art of Living, Faridabad. Studio 1, Dance and Fitness.
0: Right partner, Vogue. Women Occupied Cars. Sport partner, Nod Out. Health partner, Ajaveda. Security partner, Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: चमा चम नाच आजे, धमा दम ढोल बाजे, non-stop हल्ला मचेगा.
1: Tickets available हैं all events की साइट पे. या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, DJ की बीट और ढोल का धमाल, सब एक

0: हम सब अपनी लाइफ में ना बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें बैलेंस करना ही भूल जा रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कांची नागिया। मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यही बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, जिसमें स्ट्रेस भरी लाइफ हो रही है, बहुत सारे करियर स्विचेस हो रहे हैं, फैमिली और पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच में, तो ऐसी चीज पे आप क्या सलाह देना चाहेंगी या ये चीज आप कैसे बैलेंस कर रही हैं?
1: छोटी सी सलाह ये है औरतों के लिए कि एक तो यू कांट स्टॉप इन योर लाइफ, है ना, एक फुल स्टॉप नहीं कर सकते। जब मेरे ट्विंस होने वाले थे तो मैं बेड रेस्ट पे थी पूरा एक साल, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री तब भी चलाई, मैं वो घर ले आई फैक्ट्री, मुझे मना हो गया तो सारे लोग घर बैठ के काम करते थे, है ना। जब हमने ये शुरू किया तो आप सब चीजों के लिए निकाल सकते हो वक्त। मैं ट्रैवल भी करती हूँ और अब मेरी इच्छा है कि मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊं जहां मैं हर मंदिर में जाके अपना एक अलग एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर वगैरह करूँ। आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग एक औरत कर लेती है, कर सकती है, आपको खाली टाइम डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट भैया, सब कुछ कर लो।
0: मेरे को लगता है कि मैम ने जो बात बताई है वो सुन के या वो चीज समझ के अब हमें बैलेंसिंग करना तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए आएगा, वो बात मैं बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ, बट हमें करना आज से शुरू करना है। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। Mujhme hai smash, mujhme hai smash, mujhme hai smash, mujhme hai smash।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

0: हम मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: यहाँ पर हम आज अपने एक्सपर्ट से यानी कि हमारी गेस्ट से कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, कांची मैम यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें लोगों को सजेस्ट करती रहती हैं, बट ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपका है जहां पर आपने किसी को कुछ गाइड किया और वो सक्सेस स्टोरी आप यहां शेयर करना चाहती हैं, या उन्होंने आके आपको कुछ फीडबैक उसके बाद दिया हो और आज वो आप यहां पर शेयर करना चाहते हैं?
2: तो मेरे पास अब इस बात को 2 साल हो गए, 2 केसेस थे। मैंने कुंडली पढ़ी उनकी, उसमें मुझे अब्यूज दिख रहा था, है ना, लेडी के लिए। जब वो हस्बैंड वाइफ आए तो वो किसी एंगल से, क्योंकि हस्बैंड एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे पास आते थे, मुझे कहीं अब्यूज लगता ही नहीं था क्योंकि वो इतने अच्छी तरह बात करते थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ है प्रॉब्लम। फिर वो दोबारा जब आए तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि कुंडली में मुझे दिखता था, कार्ड्स में भी दिखता था, और वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ते थे, है ना। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कुंडली पढ़वाई, उन्होंने कहा हाँ अब्यूज है और तगड़ा वाला अब्यूज है। एक बार उनकी वाइफ अकेले आई कुछ सूट सिलवाने, तो मैंने पूछा, तो मतलब गूज बम्स आ गए मुझे जब पता लगा कि कितना अब्यूज है, है ना। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो यू नीड टू गेट इनटू अ थेरेपी। सो टुडे शी इज क्वाइट बैलेंस्ड, है ना, शी इज कम 50% कम आउट ऑफ इट। सेकेंड केस में एक और कहूंगी, उसमें बेटा और मदर आए, 27 ईयर ओल्ड बेटा था, मदर के साथ आए, मुझे एक और अब्यूज केस लगता था। मैंने जब उनको पूछा तो वो अकेली थी, तो उन्होंने अपने पैर दिखाए जहां मारा हुआ था हस्बैंड ने, फिर रोज मारते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोफेशनल हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। आज वो लेडी अपना घर है उनका और एक अच्छा कैरियर है, है ना, और आई एम हैप्पी टू सी हर, शी इज गॉट आउट ऑफ। तो मैं घर तोड़ने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जहां आपको अब्यूज मिल रहा है वहां से आपको हिम्मत करके निकलना पड़ेगा।
1: ये इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, हम पास्ट अपने फैमिली में देखते हुए आ रहे हैं और वो भी शांत रह जाते थे, इस वजह से आगे की जनरेशन भी शांत रह जाती है। बिल्कुल,
2: एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, तो मैंने जब उनका पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे लगा कि ये हर लाइफ में एक अब्यूज था और ये अब यहाँ तोड़ना चाहिए इसको, इस साइकिल को, अगर अभी भी नहीं तोड़ेंगे तो आगे भी ऐसे ही जाएंगे। सो शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, शी इज अ लाइफ कोच नाउ, you know, and beautifully running her life.
1: तो मैम इसके लिए तो थैंक यू, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने किसी की लाइफ में एक ऐसा चेंज लाके दिया कि वो अपनी लाइफ में इस ग्रोथ या इस लेवल पे कर पा रही है।
2: अब मुझे उनको देख के अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच मैम ये बात यहाँ पर रखने के लिए, और मेरे को लगता है जितने भी लिसनर्स है ना वो इस चीज से बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत कुछ कनेक्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ नया यहाँ पर उनको सीखने मिलने वाला है आज इस इंटरव्यू के बाद। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। You don't want to settle, you move it,

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: मैम ये थोड़ा सा सीरियस वे में भी जा सकता है, या आप इसे बेटर कैसे एक्सप्लेन कर सकती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर कांची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं और इसी के बारे में हम आगे जर्नी में बात कर रहे थे। मैम रिलेशनशिप और मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, कंसर्न करने आते होंगे, रीडिंग कराने आते होंगे वैदिक के थ्रू या टेरो के थ्रू, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, इंसान क्या फेस कर रहा है, या आप उन्हें किस तरह से अप्रोच करके या किस तरह से आप उन्हें सजेस्ट करते हैं?
1: एक वुमन को ये मैसेज देना चाहेगी कि अपनी ना स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। यू कैन डू इट, है ना, नॉट एट 30, नॉट एट 20, 30, 40, 50 पे तो कभी भी नहीं, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ, फटाफट फटाफट करो, रुको मत, है ना। यू नीड टू कीप वॉकिंग, एंड व्हेन यू वॉक देन ओनली यू

0: कि पूरे इंटायरली हम अंदर तक जाते हैं एक कार्ड के मतलब के, एक एक जो उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर सिंबल है उसका क्या मतलब है, और वो दूसरे कार्ड के साथ क्या दे रहा है, उसके प्लैनेट्स क्या हैं, आपको कब उसकी ज़रूरत है नहीं है, तो और केस स्टडीज होती है है ना। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास एक कोई जना आता है, इंट्यूशन भी बहुत मैटर करती है इस सब में। तो मैंने मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाई, लेकिन साथ साथ पीएचडी करने के बाद जो इन डेप्थ एक हफ्ते के कोर्स में नहीं आ सकता है ना, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप इन डेप्थ नहीं जा सकते। तो टचवुड अभी जब कोई मुझे पलट के कहता है ना कि मैम आप कैसे कर लेते हो जो बोलते हो वो शाम तक हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की।
1: मेरे को लग रहा है जब मेंटोर आपकी तरह हो या गाइडेंस आपकी तरह मिल रहा हूं मैम, तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिस स्मूथनेस के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए या आप क्या स्टेप फॉलो करती हैं, तो हैट्स ऑफ मैम कि आप ऐसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रही हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। थैंक यू सो मच उन सबके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको आज बोल रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: टाइम फॉर अ मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो शायद आज आपको मोटिवेट कर देगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर काची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड एंड प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैम ने महारत हासिल करी हुई है, प्लस फैशन का भी बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड मैम का रहा है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, जितनी भी नारी नंबर वन है हमारी जो अभी हमको सुन रही है देश भर में, तो उन महिलाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी आपसे इंस्पायर हो इनरली और स्ट्रांग बन सके और अपनी एक पहचान कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी दुनिया में बना सके?
1: चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, यू कांट स्टॉप वॉकिंग, है ना। यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स, दैट्स द वे टू हैव सक्सेस। एंड गाइज, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, एक चीज करके मत बैठ जाओ, है ना। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव द कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो।
0: मीन्स अ लॉट मैम कि आपने टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़ी और हमारी जितनी फीमेल्स हैं उन्हें और मोटिवेट करने में इस जर्नी में हमारा साथ आपने दिया, और आई होप आपको गुड हेल्थ के लिए गुड विशेस। मैम मेरी तो बस गुड विशेस यही है कि आपकी हेल्थ जो है वो और अच्छी रहे, आप हेल्दी रहे और ऐसे ही आगे और लोगों को मोटिवेट करती रहे, उनको उनकी लाइफ में एक नया विजन देती रहे जैसे आप अभी तक दे रही हैं। थैंक यू सो मच मैम और फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: करके।
1: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
2: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
1: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

करूंगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूगा दिल नाले

हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। अच्छा, कभी कभी ना दिन की शुरुआत चाहे जितनी भी एनर्जेटिक हो, दोपहर तक आते आते बॉडी बोल ही देती है कि बस भाई अब थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। काम अपनी जगह चल रहा है, लंच भी हो गया होगा और अब दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो बस इसी ब्रेक में मैं हूँ आपके साथ, लेकर आई हूँ थोड़ी फिल्मी बातें, थोड़ी गॉसिप, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ऑब्वियसली म्यूजिक का तड़का। भाई मैं हूँ पलक और अगले 2 घंटे आपके साथ होंगे बिल्कुल फिल्मी फ्लेवर वाले, सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। तो जहां भी है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आफ्टरनून अब बोरिंग नहीं रहने वाला। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: ढोल डांडिया नॉन स्टॉप गरबा सो गेदर योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर गरबा गैंग
1: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है फुल ऑन गरबा नाइट
0: टिकट्स अवेलेबल हैं ऑल इवेंट्स की साइट पे या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9311304040 पर
1: ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026 इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग डीजे की बीट और ढोल का धमाल सब एक साथ

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों को याद करते हैं और हर रूप अपने अंदर एक अलग शक्ति, अलग हिम्मत और अलग कहानी समेटे है। और अगर बात हो शौर्य, स्ट्रेंथ और एक पावरफुल पर्सनालिटी की, तो ये फिल्म हमेशा याद आती है जिसका नाम है पद्मावत। 2018 में आई संजय लीला भंसाली जी की ये फिल्म अपनी ग्रैंड विजुअल्स, लार्जर देन लाइफ सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए याद की जाती है। दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती के रोल में डिग्निटी और स्ट्रेंथ को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। शाहिद कपूर ने रतन सिंह का करेक्टर निभाया है और रणबीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी ऑनेस्टली फिल्म के सबसे इंटेंस परफॉर्मेंसेस में से एक रहा। फिल्म की स्टोरी टेलिंग हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन भंसाली जी ने सिनेमेटिक लिबर्टी भी ली है, इसलिए इसे प्योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह देखने के बजाय एक सिनेमेटिक पॉइंट के तौर पर देखना बेटर है। ओवरऑल पद्मावत एक विजुअल ग्रैंड, इमोशनली इंटेंस फिल्म है जहां प्राइड, करेज और सेक्रीफाइस तीनों एक साथ नजर आते हैं। और नवरात्रि के इन दिनों में इसी तरह सिनेमा की कुछ और पावरफुल कहानियों को भी कनेक्ट करती रहूंगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।
2: आप जब मेरे को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ,

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: मेरा

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को याद करते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर इन्हीं रूपों की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर देखने को मिले तो। जी हाँ, एक नई माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है जिसका नाम है महादेवी आदिशक्ति द लेजेंड ऑफ माँ दुर्गा। फिल्म में माँ आदिशक्ति के अलग अलग रूप और उनकी कथाएं दिखाई जाएंगी, महिषासुर मर्दिनी से लेकर माँ काली तक। और इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन पर नहीं है बल्कि हैंड ड्रॉन एनिमेशन के थ्रू बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट से 150 से ज्यादा एनिमेटर्स जुड़े हुए हैं और नवरात्रि के पहले दिन इसका फर्स्ट लुक और प्रोमो भी रिलीज किया गया है, जिसे देखकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। और ये फिल्म फरवरी 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माइथोलॉजी और एनिमेशन का ये कॉम्बिनेशन पहले भी ऑडियंस को इम्प्रेस कर चुका है। माँ अवतार नरसिम्हा की सक्सेस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो नवरात्रि के इस सेलिब्रेशन में माँ आदिशक्ति की ये कहानी बड़े पर्दे पर कितना कमाल करती है, उसका वेट तो हम सभी को करना पड़ेगा भाई। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके पर।

किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ फिल्में सिर्फ हिट नहीं होती, वो अपने करेक्टर्स और कहानी की वजह से ऑडियंस के दिमाग में परमानेंटली रजिस्टर हो जाती हैं। और द डर्टी पिक्चर भी बिल्कुल ऐसी ही फिल्म थी भाई। 2011 में आई विद्या बालन स्टारर द डर्टी पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही, साथ ही विद्या के करियर को भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर लेकर गई थी। और अब 15 साल बाद इसका सीक्वल ऑफिशियली प्लानिंग स्टेज में आ गया है। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने खुद कंफर्म किया है कि वो द डर्टी पिक्चर पार्ट 2 पर काम कर रही हैं और उनके पास सीक्वल के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विद्या बालन फिर से लीड रोल में नजर आएंगी या इस बार एक नया फेस सिल्क की कहानी को स्क्रीन पर लेकर आएगा। फिलहाल कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद फैंस की क्यूरियोसिटी डेफिनेटली बढ़ गई है। पहले पार्ट ने ऑडियंस को सरप्राइज किया ही था, लेकिन अब देखना ये है कि द डर्टी पिक्चर पार्ट 2 क्या नया पिक्चर दिखाती है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी, मैं हूं पलक आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा एक गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत गाने को अपनी आवाज देने वाले सिंगर केजे येसुदास ने अपने करियर में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। येसुदास जी की आवाज की खास बात यह है कि उनके गाने सुनते ही ना दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, जब दीप जले आना और सुरमई अखियों में, ये गाने आज भी लोगों के फेवरेट हैं। उन्होंने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया और हिंदी के साथ साथ कई दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाने गाए। और इतना ही नहीं, उन्हें 8 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले, जिनका नाम है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान से भी नवाजा गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1987 में येसुदास जी ने केरला गवर्नमेंट से कहा था कि उन्हें आगे अवार्ड के लिए सेलेक्ट ना किया जाए ताकि नए सिंगर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आज वो लाइमलाइट से भले ही दूर हैं, लेकिन उनके गाने आज भी हमारे दिलों के करीब हैं, क्योंकि अच्छी आवाज और अच्छे गाने कभी पुराने नहीं होते। अब गानों की बात मैंने कर ही दी है और वक्त भी गाने का हो चुका है, तो एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: आप रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4, गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवार प्रेजेंस डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर। एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15th अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

रेडियो महारानी

और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, रजनीकांत का स्वैग। जी हाँ, जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और टाइगर मुथुवेल पांड्यन एक बार फिर फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं। ट्रेलर में रजनीकांत का वही सिग्नेचर स्टाइल, एटीट्यूड और एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब स्क्रीन पर एंट्री हो और मास मोमेंट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन इस बार एक और चीज ने सबका अटेंशन खींच लिया है, वो है विद्या बालन। विद्या फिल्म में कांता के रोल में नजर आ रही हैं और उनका लुक एकदम डिफरेंट है। शॉर्ट हेयर, डार्क स्टाइलिंग और एक मिस्टीरियस सी वाइब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजनीकांत और विद्या बालन पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों के कैरेक्टर्स का कनेक्शन क्या है और विद्या का कैरेक्टर स्टोरी में क्या ट्विस्ट लेकर आएगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। और ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में आ रही है। तो टाइगर मुथुवेल पांड्यन के स्वैग के साथ साथ विद्या बालन का ये नया अवतार कॉम्बो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना भाई। तो अब बस देखना ये है कि ये मूवी कितना धमाल मचाएगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

चिंतलों को आदत उसका चीजा मीन की, अक्सर पांव फिसलते उनके उस चिकनी फर्श पे। इन दीवारों से घबराता ये दिल मेरा नादान, इस बेचैनी को केवल ये बेबस खिड़की समझे। देखा शहर पूरा शांत, कमी रंगों की मिली, कमी समय की कमी उन ठहरे लम्हों की मिली, सबको मंजिल की तलाश, कमी रस्तों की मिली, इतनी लाशों की ये भीड़।

0: रेत की मैंड छोड़ गए तेरे पाम भागे, पर बटिया पे निशान आज भी है। सूट पैंट गेर लिए दही पे मानस, पर तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है। तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है, और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में, और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैट्रिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर

0: शर्नैक्सस
1: हे गाइस किमें लगे सॉन्ग लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत MP3 दा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो थैंक यू सो मच 89.6
2: रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है
3: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0 एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन डिलीशियस फूड स्टॉल्स शॉपिंग एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ और सबसे खास बात एंट्री बिल्कुल फ्री है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0 कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: जरा सोचिए, अगर बचपन में सुनी हुई रामायण की कहानी बड़े पर्दे पर इतने ग्रैंड अंदाज में देखने को मिले तो एक्साइटमेंट तो बनती है ना। बात हो रही है रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायणा पार्ट वन की, जिसका एक नया पोस्टर मेकर्स ने रिलीज किया है। इस पोस्टर में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में है, साई पल्लवी माँ सीता के रोल में रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरा से शुरू होने वाली है। आमतौर पर फिल्म की बुकिंग रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले शुरू होती है, लेकिन रामायणा के लिए इसे लगभग दो हफ्ते पहले ही ओपन कर देने का प्लान है। और फिल्म का पहला पार्ट 5th ऑफ नवंबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। और इस फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका बजट भी काफी बड़ा बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि रामायण की इस ग्रैंड कहानी को मेकर्स बड़े पर्दे पर किस तरह पेश करते हैं और ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बच्चे कहते हैं ना कि अच्छी बातों का मजा तब और बढ़ जाता है जब उन्हें अपनों के साथ शेयर किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज की 2 घंटे की फिल्मी गपशप आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिले, कुछ पुराने गाने याद आए और कुछ ऐसी बातें भी हुई जो शायद आप घर जाकर किसी के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिल में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की जगह हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि लाइफ में काम तो हमेशा चलता रहेगा यार, पर खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी जरूरी है। और इसी के साथ अब मुझे लेनी पड़ेगी आप सभी से इजाजत। मैं हूं पलक और आज के फिल्मी फ्लेवर को यहीं करते हैं शट डाउन, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके। बाय बाय, टेक केयर।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या, धैर्य और डिटर्मिनेशन से जुड़ा है। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट के टाइम में जी रहे हैं। करियर में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स, हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। तो क्या पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हम आज के टाइम की रियल स्ट्रेंथ मान सकते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डेवलप करें?
1: आज
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

0: कभी पॉप कल्चर।
1: मौसम थोड़ा सुधर गया है ना, आपको भी लग रहा है? मुझे भी लग रहा है। और सुबह तो इतना प्यारा वाला मौसम था आज, लाइक सुबह सुबह ठंडी ठंडी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और अब ऐसे ही दिन आने वाले हैं।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
1: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत करता हूं। और जहां मैं बात कर रहा हूं अभी मौसम की, तो बस यही बोल रहा हूं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम। और इसके अलावा रेडियो महारानी पर मंडे की शाम को गौरव आ चुका है। एंड एक और बात, आप लोग आज थके हो गया? नहीं थके हो सकते यार, क्यों थके हो? देखो, ये नवरात्रों के दिनों का इंतज़ार करते हैं हम लोग। अब डांडिया नाइट चल रही है, गरबा नाइट चल रही है, उसके अलावा देखो वीकेंड जो आएगा ना ये वाला, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दुर्गा पूजा में जाएंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारे जश्न होंगे फरीदाबाद में, मतलब बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं ना इस बार, तो त्यौहार आ गए हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो इस बार सेल आई थी, ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है और ऐसे करके सेल्स आती हैं, तो उसमें आप लोगों ने खरीदारी करी है इस बार? क्योंकि इस बार उतनी चकाचौंध मुझे दिखी नहीं उतनी जितनी पिछले साल थी। पिछले साल सब लोग भागा दौड़ी में लगे थे, ये फ़ोन लेना है, वो फ़ोन लेना है, इस बार कोई बात नहीं कर रहा इस बारे में। तो हम करेंगे बात, कोई और करे ना करे। और हाँ, इसके अलावा आप लोगों ने कभी ये लाइन सुनी, आई एम अ ब्लैक एंड वाइट पर्सन? ना, ब्लैक एंड वाइट ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लैक एंड वाइट पर्सन कुछ और होता है। क्या होता है, सब कुछ करेंगे बात। और इसी बीच अगर फरीदाबाद से रिलेटेड आपके पास कोई बात है जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो नंबर है मेरा 9654896896। इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, देखो फरीदाबाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं बार बार एड्रेस करता हूं, जैसे कि कूड़ा। पता है क्या, मेरे घर के पास एक जगह है, वहां पर से लास्ट टू लास्ट संडे, हाँ सिर्फ दो हफ्ते पहले, पूरा कूड़ा साफ कर दिया गया था। इनफैक्ट वहां पर बिल्कुल साफ सफाई कर दी गई थी, एक पन्नी का कतरा तक नहीं था। और आज की डेट में वहां पर फिर से उतना ही कूड़ा जमा है, इनफैक्ट अब तो रोड पर भी आ गया है। तो ये क्या सरकार आगे डाल रही है? नहीं ना, पब्लिक की दिक्कत है ये। और वहां पर सफाई कर्मचारी अगर साफ करके भी जा रहे तब भी इतना कूड़ा है। करेंगे इसके बारे में बात, बट अभी इससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर चला रहा हूँ ये गाना, सुनते रहिए। आप सभी के साथ

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, क्या आप लोगों ने सुना ये वाली लाइन, आई एम अ ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन? क्योंकि ये लाइन ना बड़ी अजीब सी लगती है, लोगों को लगता है कि ये अपने रंग की बात कर रहा है, कि खुद से काला है इसलिए बोल रहा है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग काले हैं या फिर आप लोग गोरे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन का मतलब होता है वो इंसान जो ऑलमोस्ट मतलब एक सिद्धांत पे चलता है, उसके बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में, हाँ बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ साफ बोल देता है, साफ साफ सोचता है, सीधी बात करता है, नो बकवास टाइप का, और वो ना हमेशा ग्रे एरिया से बचते हैं, वो सीधे हाँ या ना में फैसला लेंगे, वही नहीं बोलेंगे देखेंगे ना ना ना ना ना। तो ऐसे मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो सीधे हाँ या ना में फैसला लेते हैं, बट ये मैं क्यों नहीं बन पा रहा, why not I am a black and white person, मतलब मैं खुद से क्यों नहीं बन पा रहा ऐसा, बताऊँ आपको। कुछ काफ़ी बार ना बोलना भी बहुत अच्छा होता है, और ये मैंने इन लोगों से सीखा। मैं ये फ्रेज मैं पढ़ रहा था कहीं पर, किसी ने लिखा होता है आई एम अ ब्लैक एंड वाइट पर्सन, तो मैंने सोचा इसके बारे में पढ़ा जाए। तो इसका मतलब यही होता है कि देखो सही गलत को बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से देखते हैं, वो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो सही को सही और गलत को गलत मानते हैं। वो ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आ गई तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे, नीचे हम तो स्टोरी पर डाल लेंगे, ऐसे नहीं होते वो पूरा सही तरीके से उसका क्या कहते हैं उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी ऐसी सामने सब कुछ साफ रखा कीजिए, जो दिल में है वही चीज़ सामने दिखाते हैं। ये लोग रूल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, हर रूल पर काम करते हैं, बोलते हैं ये रूल है तो है। और ऐसे लोग अगर आपके ऑफिस में है ना, तो वो एम्प्लॉयर के लिए तो अच्छा है, बट काफ़ी बार जो साथ में होते हैं ना उनके लिए बेकार हो जाता है। इसके अलावा ये ईमानदार भी बहुत होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और फैसले इनके बिल्कुल ऐसे होते हैं, इनसे कभी बात कर लो तुरंत फैसला ले लेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि सोच के बताएंगे ये करेंगे वो करेंगे, ना ना ना ना ना, ये बिल्कुल एकदम तुरंत फैसला लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यू आर ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट पर्सन, सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, एंड आपके बी के लिए चला रहा हूँ ये गाना।

कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज शो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी और वो बात ये थी कि काफी सारे लोग हैं जो सड़क पर कूड़ा फेंक जाते हैं, वो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, चुपचाप कूड़ा फेंक देते हैं। मगर इसके लिए एक इलाज ढूंढ निकाला एक बंदे ने और ये इलाज बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें इंसानों को बोला जा रहा है आपका चलान कट जाएगा अगर आप कूड़ा फेंकेंगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड आप जस्ट इमेजिन कि आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं, आपके हाथ पे एक थैला, काला थैला, उसके अंदर बहुत सारा कचरा जमा है और आप उसको सड़क किनारे फेंकने का सोच रहे हैं। आपने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, आपने तुरंत सड़क किनारे फेंक दिया। इतने में एकदम से आवाज़ आती है, ओ भाई हेलो, इधर आओ, कूड़ा उठाओ और वापस ले जाओ, नहीं तो सुबह चलान कट जाएगा आपका। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हुआ है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा में एक जगह पे लोग कूड़ा डाल जाते थे, तो एक आदमी ने वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाया, जिसका घर था पास में, उसने लाउड स्पीकर लगाया, कैमरा तो लगा ही रखा था। जैसे ही उसने देखा कि कोई आया है उधर कूड़ा डालने के लिए, वो तुरंत एक्टिव हो गया, उसने सीधे लाउड स्पीकर में बोलना शुरू कर दिया, ओ हेलो भाई इधर आओ, इधर वापस आओ, कूड़ा उठाओ और कूड़ा उठा के वापस ले जाओ, नहीं तो सुबह आपका चलान कट जाएगा। और फिर वो आदमी वापस भी आया, उसने वापस अपना कूड़ा उठाया और फिर अपने साथ ले गया। आई डोंट नो उसने आगे जाके फिर से रोड के किनारे फेंक दिया होगा, हो सकता है। बट द थिंग इज, जब तक लोग नहीं मानेंगे ना, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद, दिल्ली, NCR या फिर पूरा भारत स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो कचरा तो हटाना पड़ेगा। और कुछ कचरा लोग जानबूझ के फैलाते हैं। और इसके अलावा जैसे आप लोग होटल्स में जाते हो, होटल में तो चलो कचरा फैलाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ पर डस्टबिन में डालते हो गए सारा सारा। और उसके अलावा दिल्ली मेट्रो में भी बोलते हैं ना, खान पान या कूड़ा फैलाना सख्त वर्जित है। तो ऐसे ही आप अपने घर के आसपास भी सोचिए, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही और भी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर बात करते हैं। डांडिया नाइट पे गए आप लोग? नहीं गए, चलिए करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: दीवार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

इस गाने को सुन के पूरी नवरात्रि वाली वाइब्स आई ना, मुझे तो आ गई, आप लोगों को भी आ ही गई होगी। और वैसे भी ऐसे वाले गाने तो आजकल हर जगह चल रहे हैं, डांडिया नाइट पर भी और गाड़ियों में भी, और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। सोशल मीडिया जब खोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है किसी डांडिया इवेंट में पहुंच जा रहा हूँ या फिर प्रोटेस्ट में पहुंच जा रहा हूँ। वो चीज हटा देते हैं, अभी बात करते हैं डांडिया नाइट की या फिर गरबा की। अब मैं ना पहले सोचता था डांडिया और गरबा एक ही चीज है, बट नहीं, डांडिया डंडी से खेली जाती है, वो जो छड़ी होती है ना, हाँ, रंग बिरंगी, उसे डांडिया कहते हैं। और गरबा में उन स्टिक्स की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ ताली बजाते हैं, मतलब डांस करते करते ताली बजाते हैं, हाथों के मूवमेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब मैं मूवमेंट इधर करके दिखा रहा हूँ, सोचो मतलब आप लोग बस मुझे सुन पा रहे हो एंड मैं यहाँ पर अपने हाथ मूवमेंट करके बता रहा हूँ। चलिए, मैं दो सिंपल आपको फर्क बता दिया मैंने, अब इसके बारे में बात करते हैं कि गरबा और डांडिया शुरू कैसे हुआ। कहा जाता है कि देवी ने महिषासुर को मारा था, फिर उसके बाद से ही ये जो डांडिया है ये तलवार के रूप में प्रेजेंट होती है और रिप्रेजेंट करती है तलवार को, और फिर उसके डांस करते हैं। और इसके अलावा श्री कृष्ण से भी जुड़ा है इसका इतिहास, और गुजरात और राजस्थान से भी जुड़ा है इसका इतिहास। बट इतिहास को भी फिर से थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि फरीदाबाद में बहुत सारी जगहों पर डांडिया और गरबा नाइट चल रही है, और 17 तारीख आने वाली 17 तारीख को भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग कोई भी इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो अकेले मत कीजिएगा। अकेले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार हमें ले जाओ ना साथ में, मैं भी चल दूंगा आप लोगों के साथ, हम भी एंजॉय कर लेंगे। और इसके अलावा आप सभी को बता दूं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हैं जहां पर हम लोग खुद भी जाने वाले हैं, तो आप लोग भी वहां पर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट हाँ आपको भी शायद अच्छा लग ही जाएगा। और

गरबा और डांडिया नाइट से एक और चीज याद आती है कि दशहरा भी पास आ रहा है और दशहरा से पहले होगी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में भी जो वाइब होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। एनर्जी, एक माता दुर्गा की एनर्जी जो होती है ना वहां पर प्रेजेंट होती है, आई डोंट नो हाउ बट होती है, लाइक उधर एंटर करती है, पॉजिटिविटी सी फील होती है। तो ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ एंड आप सुन रहे शो HR 89.6।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना सुनना,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रास्ता रास्ता देखो, आग मेरी लड़ी है। अरे
5: दिस इज द सोशल सॉन्ग।
6: सुबह उठे, फोन उठाया, सबसे पहले लाइक्स गिनने आया,

गाइस आप लोगों को ऑर्कुट याद है? अभी जितनी भी नई जनरेशन है ना, उन लोगों को ऑर्कुट का ओ भी नहीं पता होगा। और यहाँ पर जितने भी मिलेनियल्स बैठे हैं ना, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहली सोशल मीडिया साइट जहां पर लोग बात करते थे एक दूसरे से, वो था ऑर्कुट। ऑर्कुट में था स्क्रैपबुक। स्क्रैपबुक भरी जाती थी, याद है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। देखो, जो इंसान अभी 20 साल का होगा ना, उसको पता नहीं होगा ऑर्कुट है क्या। जो इंसान अभी 18 साल का होगा, उसको बिल्कुल नहीं पता होगा। ऑर्कुट एक्चुअली में एक सोशल मीडिया वेबसाइट थी, और ये शुरू हुई थी साल 2004 में। इंटरनेट को दोबारा इंसानों से जोड़ने वाला बनाया गया था। एक्चुअली में ऑर्कुट 2004 में शुरू हुई, और गूगल ने इसको 2014 में बंद कर दिया था, क्योंकि यूट्यूब, ब्लॉगर और गूगल प्लस जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म और तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो ऑर्कुट वैसे भी धीरे धीरे कम हो रहा था, और फिर उसके बाद लोग फेसबुक की तरफ ज़्यादा जाने लग गए थे। इस वजह से लोगों ने ऑर्कुट पे जाना छोड़ दिया या बंद करना छोड़ दिया। मगर आपको पता है, ऑर्कुट फिर से शुरू हो सकता है, और उसके जो को फाउंडर थे और फाउंडर थे, वो फिर से इसको शुरुआत करना चाहते हैं। फाउंडर का नाम ही है ऑर्कुट। हम बोलते थे ना ऑर्कुट चिरकुट वगैरह वगैरह, तो इनका नाम है ऑर्कुट बायू कुट्टो कोकटेन, ऐसे करके इनका नाम है। बहुत बड़ा नाम है, छोड़ो उसको। बट ये कहते हैं कि मुझे ना फिर से ऑर्कुट शुरू करना है, और इस बार ऑर्कुट जब मैं शुरू करूंगा तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाला हूं, और इस बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ पीछे हो जाएगा, अब इनका ऐसा कहना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ना सही है, क्योंकि जब ऑर्कुट आया तो ऑर्कुट सबने यूज़ किया, फिर उसके बाद जैसे ही फेसबुक आया तो सबने ऑर्कुट को भुला दिया। फिर उसके बाद फेसबुक की लोकप्रियता आज भी है, आई नो, बट अब फेसबुक हमारे पेरेंट्स लोग ज़्यादा चला रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर हैं। और इंस्टाग्राम पर अगर हमारी जनरेशन है, तो हमारे से आने वाली जो जनरेशन है, वो पूरी की पूरी इस टाइम स्नैपचैट पर लगी हुई है। तो ऐसे ही चीज़ें चेंज होती है, मानते हो कि नहीं? तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने ऑर्कुट यूज़ किया था? हाँ या ना? नंबर हमारा 9654896896। और अगर ऑर्कुट से जुड़ी हुई कोई भी याद है, वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आप लोगों के सपने में कभी ऐसा है कि आप लोग कोई बड़ा सा कैश प्राइज जीत चुके हैं या फिर आप एक लॉटरी जीत चुके हैं, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, याद है ना आप लोगों को? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मतलब आप सपने में देख रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे जीत गए हैं या फिर कैश प्राइज जीत गए हैं या फिर आप कोई गेम खेल रहे थे वो जीत गए हैं, जैसे क्लॉ मशीन नहीं होती उसमें जीत गए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि आपको आपके अंदर रिकग्निशन की डिज़ायर है, आपका माइंड में मतलब ये फीलिंग है कि आप मेहनत तो कर रहे हो तो इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, आपको रिवॉर्ड चाहिए। इसके अलावा एक अचीवमेंट का भी सिग्नल है कि आप कोई गोल अचीव करने या फिर कंपटीशन जीतने या फिर आप अपने आप को प्रूव करने की एक कोशिश कर रहे हो और आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग माइंड में है। और अगर रिसेंटली पैसा, करियर, अर्निंग या फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हो तो उसका भी मतलब सिंपल यही है, वो चीज़ सपना बनकर, एक कैश प्राइज बनकर आपके सपने में आती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और एक और चीज़, अगर सपने में प्राइज जीतकर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या खुशी हो रही है ना, तो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अचीवमेंट और वैलिडेशन की तरफ जाता है। अगर शॉक या डिसबिलीफ में थे आप लोग कि ये कैसे हो गया, तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर इसके हम लोग देखें कि इसमें कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी दिखाई देता है क्या, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन शायद हो भी सकता है और शायद नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल गेन हो जाए, हो सकता है रिकग्निशन मिल जाए, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपके पास आने वाली हो, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सपने को डिकोड करती हैं। और हाँ, एक और चीज़, लक भी हो सकता है, यानी कि आपका लक अब अच्छा जाने वाला है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसा लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मेहनत करते जानी है और कंसिस्टेंट रहना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ये गाना।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भर

0: तो तेरा इंतजार ही।
1: अभी ये 9 तारीख से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है। पता है क्या आपको, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा था और वो मैच देखने लायक था क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मैच रहे हैं 9 तारीख वाला भी और संडे का भी। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर अभी मैं बात करना चाहता हूं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की। 3 मैच हो चुके हैं, 2-1 से लीड बनाई हुई है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहां पर, वो ये है कि देखो ऐसा है, टीम इंडिया बहुत ज्यादा अमेजिंग है और 14 तारीख यानी कि वेंसडे को शाम को फिर से मैच होने जा रहा है, फिर उसके बाद सैटरडे को होगा। बट अभी तक जो मैच हुए ना उनमें से सेकंड वाला टीम इंडिया हार गई। ऑल्दो सेकंड वाला सबसे बेस्ट खेला था, एक हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था, बट उसके बावजूद हार गई। उस चीज़ का मलाल नहीं है मुझे क्योंकि कल वाले मैच में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर इंडियन बॉलर्स ने भी और इंडियन बैटर्स ने भी। अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो बॉलर्स में से सबसे बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाई है अर्शदीप सिंह ने। 3 विकेट तुरंत ले लिए। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, इंडियन बैटर्स गजब की बैटिंग करके दिखाई है। जैसे कि 2-3 खिलाड़ी हैं, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों का नाम तो मैं लेना ही चाहता हूं क्योंकि अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30 बॉलों में 5 छक्के 6 चौकों की बदौलत, मतलब 54 रन तो सिर्फ छक्के चौकों से मारे हैं, 69 रन बनाए इस लड़के ने। और वहीं पर ईशान किशन की बात करूं तो 18 बॉलों पर 205 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन का जलवा नहीं चल पाया, बट वहाँ पर तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। फिर नमन धीर आए, उन्होंने भी 5 बॉलों में 10 रन बनाए और आउट हो गए। फिर नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे 14 बॉल खेल के, 21 रन बनाए उन्होंने भी। बट नो डाउट टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे लगता है आने वाले मैच में और भी ज़्यादा अमेजिंग वाली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली है। ऑल्दो 2-1 से हम लोग लीड पे हैं, बट आने वाले दोनों मैचेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और अगर अपकमिंग मैच यानी कि 14 वाला मैच अगर इंडिया हार गई तब तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, मगर अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना। कान टूटे बंदे रवे मित्रा की।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: एक चीज में ना आप सभी से पूछना चाहता हूँ, और मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आया है कि फिल्मों ने इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ कमा लिए, तो प्रोड्यूसर कितने कमाता है उन पैसों में से?
1: जब शाम को चाहिए एंड बिग

0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ।
1: आप लोगों के मन में कभी सवाल आया है वाला जिसमें हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए तो प्रोड्यूसर कितना कमाएगा। मेरे मन में बहुत बार सवाल आया है। कुछ मूवीज़ होती हैं जो 500 करोड़ में बनती है, कुछ मूवीज़ होती है जो 400 करोड़ में बनती है और वो 1000 करोड़ कमा लेती है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर कितने कमाता है। चलो इसको ना एक सिंपल शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। सपोज करते हैं मूवी की टिकट 100 रुपये की आती है तो उसमें 18% GST लग गई, अब 82 रुपीज़ बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर में के बीच बंटवारा होता है, मतलब 41 रुपये करीब करीब मल्टीप्लेक्स का हिस्सा रहेगा और अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की तो उसके पास भी 41 रुपये जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन और प्रोड्यूसर की कमाई यही होती है, मतलब टोटल कमाई मतलब 35 से 36 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 5 से 20% तक रहता है और 10% कमीशन पाने वाले भी काफ़ी बार होते हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि प्रोड्यूसर

को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 से 36 रुपए मिलते हैं एक मूवी के टिकट पे। 100 रुपए की टिकट हम लोग मान के चले हैं तो 35 से 36 रुपए एक टिकट पे उन्हें मिले हैं। अब सोचो अगर मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए तो मतलब साफ है कि 300 से 350 करोड़ रुपए एक प्रोड्यूसर आसानी से कमा लेता है। अब सोचो साल में सिर्फ और सिर्फ उसको 2 मूवीज बनानी है, साल में भी नहीं छोड़ो यार, 5 साल में 2 मूवीज बनानी है जिसमें उसको 1000 करोड़ कमाई करनी है। सोचो कितना ज्यादा अमेजिंग रिटर्न मिलता है, 350 करोड़ दो बार कर लो 700 करोड़ का रिटर्न। अब ये चीज अपने लाइफ में मतलब लगाओ और देखो। अब हनुमान अंश ने भी बहुत कमाई करी है, 2 करोड़ रुपए लगाकर बहुत सारी कमाई करी है, तो ये सारी मूवीज कमाई करती है। तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा स्कोप है ये, किसी अच्छे फिल्म राइटर और डायरेक्टर को पकड़ो और फिर फिल्म बना दीजिए। और कैसे बनानी है, ChatGPT से पूछ लो। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, बातें और गाने चलते रहेंगे, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के

आदमी एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: कुछ हटके।
1: सिनेमा का कैप्सूल, वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, Z5 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नए मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ स्पेशल है फीमेल्स के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ तो स्पेशल। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और वो स्पेशल चीज है वोक, WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, के से कार। और इसी के साथ साथ बता दूं, ये एक पहली सिर्फ और सिर्फ वुमेन द्वारा चलाई गई गाड़ी कैब सर्विस है जो कि दिल्ली NCR में चल रही है, जिसमें फरीदाबाद भी इंक्लूडेड है। फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव, इन एरियाज में एक कैब मिल जाएगी जस्ट टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने 360 डिग्री सर्वेलेंस कैमरा लगाया हुआ है, SOS सपोर्ट बटन भी लगाया हुआ है, फ्रंट में भी, रेयर में भी। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एडिशनल है, जैसे कि ड्राइवर असिस्ट है और अम्ब्रेलाज भी ये लोग कैरी करते हैं, बुजुर्गों की भी मदद करते हैं। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वोक से अंजलि। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये वोक का आइडिया आया कैसे और इसकी शुरुआत के पीछे का रियल इंस्पिरेशन क्या था?
1: मेरे घर के पास एक टेंट लगा था, उससे मतलब मुझे पता चला कि फीमेल्स भी ड्राइविंग कर सकती हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने घर में बताई तो मेरी दीदी ने सपोर्ट किया कि हाँ तुम भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ड्राइविंग अब कर रही हूँ।
0: तो अंजलि जी की ये जो स्टोरी है ये तो काफ़ी इंस्पायरिंग है और इसमें और भी बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है। बट इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि अकेले ट्रैवल करती हैं, और या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अकेले ट्रैवल करती हैं, या फिर कोई बुजुर्ग हैं, उनको आप ज़रूर बोलिएगा कि वोक कैब सर्विस ज़रूर लें। और आप कैसे बुक कर सकते हो? एप्पल ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। वोक की फुल फॉर्म है वुमेन ऑक्यूपाइड कार, मतलब WOK। तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और वोक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कैब बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी है 999-04-388-55। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 999-04-388-55। फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वोक के बारे में अंजलि जी से और भी बातें होती रहेंगी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि दिल्ली एनसीआर में जॉब करती हैं और आपको हो जाता है लेट कभी वापस आने में, तो आप कैब बुक करती हैं या फिर आप भी मेट्रो से ट्रेवल करती हैं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। जब भी लेट हो जाता है ना, तो लोगों के मन में एक सवाल आता है, खासकर वुमेन्स के मन में एक सवाल आता है कि हम लोग अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कैसे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है लोग कैब्स पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इसी का भरोसा दिलाने के लिए आया है वोक। वोक मीन्स WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार। ये सोलली 24/7 वुमेन्स के द्वारा चलाई गई कैब सर्विस है जो कि दिल्ली NCR में है, और उन्हीं से जुड़ी है हमारे साथ एक फीमेल कैब ड्राइवर अंजलि। तो अंजलि जी, आज मार्केट में बहुत कैब सर्विसेज हैं, लेकिन वोक को अलग क्या बनाता है?
1: वोक को अलग ये बनाता है कि वोक एक फीमेल्स को सपोर्ट करती है और साथ में बच्चों को और एजेड लोगों की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देती है।
0: तो अगर आप भी कैब सर्विस लेने में थोड़ा सा कतराते हैं तो ये स्पेशल आपके लिए है। WOK वोक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। WOK फोन नंबर है 9990438855। और इसी के साथ साथ वोक के बारे में और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। I've been

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जब भी हम लोग अपनी फैमिली मेंबर या फिर हम लोग अपनी फैमिली में किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे या फिर किसी विमेन के लिए कैब बुक करते हैं, तो हमारे मन में 100 टाइप के सवाल आते हैं। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जो मैंने अभी सवाल किया कि जब भी अपने फैमिली में वुमेन्स के लिए या फिर ओल्ड एज किसी पर्सन के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए हम लोग कैब बुक करते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि सेफ होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को बता दूं, इसी के लिए आया है वोक कैब। वोक मीन्स WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, या फिर हम बोल सकते हैं वुमेन्स ओल्ड एज एंड किड्स। तो इसी में हर सफर सुरक्षित है, हर महिला सशक्त है, और 24/7 आप सभी के लिए ये अवेलेबल है। डेली कम्यूट्स, फैमिली विजिट्स, लेट नाइट रिटर्न्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर, आउट स्टेशन ट्रिप्स, सब के लिए अवेलेबिलिटी है वोक के थ्रू। तो वोक से जुड़ी है आज हमारे साथ अंजलि। तो अंजलि जी, देखो वोक

तो मुझे लगता है कि रोक जो है वो बहुत ही सही है, क्योंकि उधर वेरीफाइड वुमेन्स ड्राइवर है, जितनी भी राइडर्स है ना वो सारी की सारी, उनका बैकग्राउंड चेक हुआ है और सेल्फ डिफेंस ट्रेन वुमेन ड्राइवर्स हैं, और इसी के साथ साथ 360 डिग्री सर्वेलेंस भी है, फ्रंट रेयर एंड कैबिन कैमरा भी उसमें अंदर है, और साथ ही साथ SOS सपोर्ट बटन भी है। तो आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसने भी लिया है, और इसी के साथ साथ मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, फरीदाबाद में अगर आप रहते हैं और आपको कभी रात को निकलना है और आप सोचते हैं कि कैब सेफ नहीं है, तो आप जा सकते हैं वो कैब के साथ, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, या फिर हम बोलें वुमेन ओल्ड एज और किड्स के लिए ये स्पेशल कैब सर्विस। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए और भी ढेरों गाने लेकर आएंगे, सुनिए इस गाने को, मैं हूं गौरव आपके साथ बातें और गाने भी चलते रहेंगे।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: जब भी हम अपने फैमिली में किसी फीमेल मेंबर के लिए कैब बुक करते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है ना कि ड्राइवर कौन आएगा, राइडर कौन आएगा, क्या वो सेफ है भी या फिर नहीं, क्या इस कैब में जाना सेफ है भी या फिर नहीं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? और हम लोग आज बहुत देर से बात कर रहे हैं वो कैब सर्विसेज के साथ, यानी कि WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, और WOK के नाम से आपको इनकी ऐप मिल जाएगी जहां से आप आसानी से कैब बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक भी मेल राइडर आपको नहीं मिलेगा, सारी की सारी फीमेल ट्रेन स्टाफ है जिनका बैकग्राउंड चेक हुआ है, एंड इसी के साथ साथ वो सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेंड है, SOS बटन है गाड़ी के अंदर, तो और क्या चाहिए। बट यहां पर ना मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये नो सिंगल मेल पॉलिसी क्यों आई, और अंजलि जी एक और बात बताइए कि इसका ना रिस्पांस कैसा रहा?
1: ये रिस्पांस अच्छा ही है, मतलब कोई भी हम सिंगल मेल हमारा बुक नहीं करता है,
0: तो साफ मतलब है कि कोई भी मेल अगर राइड करना चाहता है तो उसके लिए कैब बुक नहीं होगी। और इसी के साथ साथ आप सभी को एक और बात बता दूं कि अंजलि जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो कल भी हमारे साथ जुड़ेंगी। वैसे बहुत छोटे छोटे स्पष्ट आंसर दे रही हैं, खैर ये सब चीज़ें तो बातें होती रहेंगी, मगर इसके साथ साथ आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूं। और हाँ, फिर से बता देता हूं, अगर आपकी फैमिली में कोई भी विमेन या ओल्ड एज पर्सन या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए आप कैब बुक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं सेफ्टी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वोक ऐप WOK, और उधर से आप विमेन राइड बुक कर सकते हैं, मतलब ड्रिवन बाय वुमेन फॉर वुमेन। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना जैस्मिन सैंडल्स की आवाज में, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर हम फिर

आज शो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सड़क पर कूड़ा फेंक जाते हैं। वो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, चुपचाप कूड़ा फेंक देते हैं। मगर इसके लिए एक इलाज ढूंढ निकाला एक बंदे ने, और ये इलाज बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें इंसानों को बोला जा रहा है आपका चालान कट जाएगा अगर आप कूड़ा फेंकेंगे। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड आप जस्ट इमेजिन कि आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं, आपके हाथ पे एक थैला, काला थैला, उसके अंदर बहुत सारा कचरा जमा है और आप उसको सड़क किनारे फेंकने का सोच रहे हैं। आपने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, आपने तुरंत सड़क किनारे फेंक दिया। इतने में एकदम से आवाज आती है, ओ भाई हेलो, इधर आओ, कूड़ा उठाओ और वापस ले जाओ, नहीं तो सुबह चालान कट जाएगा आपका। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हुआ है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा में एक जगह पे लोग कूड़ा डाल जाते थे, तो एक आदमी ने वहाँ पर लाउडस्पीकर लगाया, जिसका घर था पास में, उसने लाउडस्पीकर लगाया, कैमरा तो लगा ही रखा था। जैसे ही उसने देखा कि कोई आया है उधर कूड़ा डालने के लिए, वो तुरंत एक्टिव हो गया, उसने सीधे लाउडस्पीकर में बोलना शुरू कर दिया, ओ हेलो भाई इधर आओ, इधर वापस आओ, कूड़ा उठाओ और कूड़ा उठा के वापस ले जाओ, नहीं तो सुबह आपका चालान कट जाएगा। और फिर वो आदमी वापस भी आया, उसने वापस अपना कूड़ा उठाया और फिर अपने साथ ले गया। आई डोंट नो उसने आगे जाके फिर से रोड के किनारे फेंक दिया होगा, हो सकता है। बट द थिंग इज, जब तक लोग नहीं मानेंगे ना, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद, दिल्ली, NCR या फिर पूरा भारत स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो कचरा तो हटाना पड़ेगा, और कुछ कचरा लोग जानबूझ के फैलाते हैं। और इसके अलावा जैसे आप लोग होटल्स में जाते हो, होटल में तो चलो कचरा फैलाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ पर डस्टबिन में डालते हो गए सारा। और उसके अलावा दिल्ली मेट्रो में भी बोलते हैं ना, खान पान या कूड़ा फैलाना सख्त वर्जित है। तो ऐसे ही आप अपने घर के आसपास भी सोचिए, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही और भी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर बात करते हैं। डांडिया नाइट पर गए आप लोग? नहीं गए? चलिए करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों के सपने में कभी ऐसा है कि आप लोग कोई बड़ा सा कैश प्राइज जीत चुके हैं या फिर आप एक लॉटरी जीत चुके हैं, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, याद है ना आप लोगों को? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मतलब आप सपने में देख रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे जीत गए हैं या फिर कैश प्राइज जीत गए हैं या फिर आप कोई गेम खेल रहे थे वो जीत गए हैं, जैसे क्लॉ मशीन नहीं होती उसमें जीत गए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि आपको आपके अंदर रिकग्निशन की डिज़ायर है, आपका माइंड में मतलब ये फीलिंग है कि आप मेहनत तो कर रहे हो तो इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, आपको रिवॉर्ड चाहिए। इसके अलावा एक अचीवमेंट का भी सिग्नल है कि आप कोई गोल अचीव करने या फिर कंपटीशन जीतने या फिर आप अपने आप को प्रूव करने की एक कोशिश कर रहे हो और आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग माइंड में है। और अगर रिसेंटली पैसा, करियर, अर्निंग या फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हो तो उसका भी मतलब सिंपल यही है, वो चीज़ सपना बनकर, एक कैश प्राइज बनकर आपके सपने में आती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और एक और चीज़, अगर सपने में प्राइज़ जीतकर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या खुशी हो रही है ना, तो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अचीवमेंट और वैलिडेशन की तरफ जाता है। अगर शॉक या डिसबिलीफ में थे आप लोग कि ये कैसे हो गया, तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर इसके हम लोग देखें कि इसमें कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी दिखाई देता है क्या, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन शायद हो भी सकता है और शायद नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल गेन हो जाए, हो सकता है रिकग्निशन मिल जाए, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपके पास आने वाली हो, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सपने को डिकोड करती हैं। और हाँ, एक और चीज़, लक भी हो सकता है, यानी कि आपका लक अब अच्छा जाने वाला है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे पैसा लगा दो। आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसा लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना। आप लोगों को मेहनत करते जानी है और कंसिस्टेंट रहना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ये गाना।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आप लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं? क्योंकि अगर आप लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं तो आप लोगों को टाइम का एक हिसाब रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जिम में टाइम का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये बताने के लिए मैं आ गया हूँ। रेडियो का गौरव AKA जिम ब्रो है आप सभी के साथ। और रोज शाम को इस टाइम हम लोग जिम टिप्स के बारे में बात करते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात करें कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी वाइल यू आर डूइंग वर्कआउट। चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप रनिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप योगा करते हैं, XYZ कुछ भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ लोग ना जिम चले जाते हैं, वहाँ 1.5-2 घंटा बिता कर आते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रात को लेट तक फ़ोन में लगे रहते हैं, सो ढंग से पाते नहीं है, रेस्ट मिलता नहीं है बॉडी को, और फिर नेक्स्ट डे फिर से जिम चले जाते हैं, फिर उनका यही रूटीन कंटिन्यू रहता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम कैलकुलेट करके चलना है कि आपको कितना टाइम जिम में देना है, कितना टाइम आपको नींद लेनी है, कितना टाइम आपकी बॉडी एट रेस्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वर्कआउट जब आप कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि एक सेट किया और फिर 5 मिनट बातें करने में लग गए। क्योंकि मैं तो अपने जिम में देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को जो बस इधर से उधर बातें करते रहते हैं और डंबल इंतज़ार पर रखवा देते हैं, मतलब वेट अपने पास रख लेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही आप लोग डंबल उठाने जाएंगे फिर से आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो बात करने में फिर से लग जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक देम, अपना वर्कआउट कीजिए और टाइम मैनेज कीजिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि रोज शाम को इस टाइम जिम टिप लेकर आता हूँ जिम ब्रो बनकर। और अभी आप सभी के लिए चला रहा हूँ गाना, रेडियो महारानी 89.6 पर।

आज सुबह का मौसम वॉज रियली ऑसम। शाम हो चुकी है बट ये ठंडक बाहर अभी भी मौजूद है। आप लोग बाहर घूम रहे हो क्या या गाड़ी में हो?

गिरता चला जाएगा। और इसी के साथ साथ मौसम में टेम्परेचर में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, 18 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच सकता है कमिंग वीकेंड। एंड एक और बात बोलना चाहूँगा, देखो आज एयर क्वालिटी अमेजिंग हो चुकी है, तो इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, 100 से नीचे है, कोशिश करेंगे कि ऐसी ही बनी रहे, और ऐसी ही अगर बनी रहेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने आज बात करी थी वो ये कि अगर आपके आसपास कहीं पर गरबा नाइट हो रही है, डांडिया नाइट हो रही है, मुझे बुला लो यार, मेरे को बड़ा मन है, बहुत मन है, मेरे को मन कर रहा है कि वहाँ जाऊँ, नाचूँ, दिल खोल के नाचूँ, सबसे बड़ी बात। और हाँ, एक और चीज़, जनता माफ़ नहीं करेगी बोलूँ या फिर भगवान माफ़ नहीं करेंगे उन लोगों को जो इंसान व्रत वाले इंसान के सामने बैठ के समोसे कचौड़ी लपेट रहा है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मेरे ऑफिस में ऐसा ही हुआ कि लोगों ने मेरे सामने कचौड़ी और समोसे लपेटे हैं। कल तो मेरा फास्ट नहीं होगा ना, कल तो मैं भी लपेट सकता हूँ ना, करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कल बात। तो इसीलिए मेरा हो गया यहाँ से जाने का टाइम, लेता हूँ इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं बुला गया तो?
2: नहीं क्यों?
0: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर

0: रात के 9 बज चुके हैं और अब शायद दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा वक्त अपने लिए है और मुझे लगता है रात का ये वक्त ना बातचीत के लिए सबसे सही होता है, क्योंकि दिन में हम कितने ही कामों में उलझे रहते हैं लेकिन रात होते होते दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर कुछ बातें अपने आप याद आने लगती हैं। शायद कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन, शायद किसी का आज आया हुआ मैसेज या फिर किसी एक ऐसे इंसान की याद जिससे आज बात तो हुई लेकिन जितनी करनी थी उतनी नहीं हुई। और यहीं से शुरू होती हैं वो बातें जिनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है। सो हेलो एंड वेलकम टू इश्क बाजियां, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और अब वक्त है मेरे पहले सेगमेंट इश्क शायराना का, जहां हम सिर्फ शायरी सुनेंगे नहीं बल्कि उस शायरी के पीछे छुपी उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज प्यार करने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, रिश्तों के नाम बदल गए हैं, लेकिन किसी के एक मैसेज से चेहरे पर स्माइल आ जाना, किसी की आवाज सुनकर मूड थोड़ा बेहतर हो जाना और किसी के साथ बिना किसी खास टॉपिक के भी घंटों तक बात करते रहना, ये चीजें शायद आज भी वैसी ही हैं। तो आज की रात थोड़ी बात होगी आज के रिश्तों की, आज के जेनरेशन के प्यार की और उन छोटी चीजों की जिन्हें हम अक्सर कैजुअली ले लेते हैं। और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ और लौटेंगे इस गाने के बाद।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: हैदराबाद के इंचो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
0: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ आपके इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और एक बात अक्सर आपने नोटिस की होगी कि हम बात तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते। हमारी जनरेशन के पास कम्युनिकेशन की कमी बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, हम किसी को भी कभी भी रीच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बात बहुत करते हैं लेकिन कहते बहुत कम है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खाया। हाँ, कैसा था दिन? ठीक था। और कॉन्वर्सेशन खत्म। लेकिन उसी इंसान से अगर एक रात अचानक बात निकल जाए तो फिर वो दो घंटे पता ही नहीं लगता, क्योंकि शायद हमें हर रोज बात करने वाला इंसान नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जिसके साथ बात करना मीनिंगफुल लगे। और आजकल रिलेशनशिप्स में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही लगती है, हम सब कनेक्शंस चाहते हैं लेकिन वल्नरेबिलिटी से थोड़ा सा डरते हैं। हम किसी को अपनी फोटो भेज सकते हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बोलने में हेजिटेशन फील होती है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि शायद आज के वक्त में फीलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फीलिंग्स दिखाने से। हम आई मिस यू कहने की जगह एक रील भेज देते हैं, टेक केयर की जगह स्टोरी पर रिएक्ट कर देते हैं, और मुझे तुमसे बात करनी है की जगह लिख देते हैं फ्री हो। लेकिन प्यार की भाषा शायद अब भी वही है, बस हमारे तरीके थोड़े से बदल गए हैं। तो इस बदलती हुई भाषा को आज हम समझेंगे इस गाने के थ्रू। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और एक कहते हैं ना कि किसी को पसंद करना और किसी को चुनना, आपने कभी नोटिस किया है आजकल किसी को पसंद करना कितना आसान है? किसी की प्रोफाइल अच्छी लग जाती है, उसकी बातें अच्छी लग जाती हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है और बस थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन किसी को चुनना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पसंद तो आपको बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन जब बात किसी एक इंसान की आती है ना, तो फिर आपको सिर्फ उसकी अच्छी बातें नहीं दिखती, उसका बिजी होना भी दिखता है, उसकी छोटी छोटी आदतें भी दिखती हैं, उसके मूड स्विंग्स भी दिखते हैं, उसकी अपनी दुनिया भी दिखती है। और फिर भी आप कहते हैं हाँ इसी इंसान के साथ मुझे रहना है। शायद यही फर्क है अट्रैक्शन और लव में। और इसी बात पर जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या खूबसूरत बात कही है ना, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, इतने चेहरे हैं, इतनी कन्वर्सेशंस हैं, लेकिन दिमाग बार बार जाकर एक ही इंसान पर रुकता है। और आज के वक्त के लिए शायद ये फीलिंग और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम किसी से बात बंद कर दें तो कोई दूसरा मिल सकता है, किसी की प्रोफाइल पसंद नहीं आई स्वाइप कर सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा दूसरी कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक इंसान का कैसे हो बाकियों के इसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगे, तो शायद मामला सिर्फ पसंद का नहीं है। कुछ लोग ऑप्शन नहीं होते, कुछ लोग प्रेफरेंस बन जाते हैं। मुझे लगता है प्यार की खूबसूरती भी यही है कि हजारों लोगों के बीच भी आपके दिल को एक आवाज थोड़ी ज्यादा अपनी लगने लगे। तो आज की रात अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक शख्स है जिसका नाम आते ही आपकी अटेंशन अपने आप उधर चली जाती है, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शायद शायर ने आपकी सिचुएशन बहुत पहले लिख दी है। और अब उसी एहसास के साथ एक और खूबसूरत गाना, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है इश्क में जगह बनाना। और आज के इश्क शायराना में जाते जाते एक बात, हम प्यार को अक्सर बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स में ढूंढते हैं, फ्लावर्स, डेट, सरप्राइजेज, लॉन्ग ड्राइव्स, लेकिन कभी कभी किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना इससे कहीं ज़्यादा सिंपल होता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपके हर डिसीजन में अपना ओपिनियन नहीं थोपता, आपके हर खाली वक्त पर अपना हक नहीं जताता, बस आपकी जिंदगी में अपनी एक छोटी सी जगह बना लेता है। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा, ये इंसान अब मेरी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सुबह कुछ हुआ तो उसे बताना है, कुछ फनी मिला तो उसे भेजना है, कोई अच्छी खबर मिली तो सबसे पहले उसी को बताना है। और फिर एक दिन रियलाइज होता है, प्यार शायद वो नहीं था जब पहली बार बटरफ्लाइज हुई थी, प्यार तो शायद वो था जब उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में नेचुरल हो गई थी। आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए किसी ग्रैंड मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जॉर्नेलियस आपका एक और शेर है, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें पूरा रिश्ता छुपा हुआ है। एक तरफ रूठने की आजादी और दूसरी तरफ मनाए जाने का भरोसा। और शायद आज के वक्त में हमें एक ऐसा ही रिश्ता चाहिए जहां आपको हर वक्त परफेक्ट बनने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़ा रूठ सकें, आप थोड़ा नखरा कर सकें, कभी अपने मन की बात ना कह सकें, और शायद सामने वाला फिर भी समझने की कोशिश करे। क्योंकि हेल्दी लव शायद वो नहीं जहां कभी कोई नाराज ही ना हो, हेल्दी लव शायद वो है जहां नाराजगी के बाद भी दोनों को पता हो कि हम इस बात को ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है यही भरोसा भी किसी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आपको हर वक्त अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहां आप थोड़ा सिली हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा चाइल्डिश हो सकते हैं, आपको सिर्फ प्यार नहीं मिला है, आपको शायद एक ऐसी जगह मिली है जहां आप खुद हो सकते हैं। और शायद इश्क की इससे खूबसूरत डेफिनेशन और कोई नहीं। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये था आज का इश्क शायराना। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात अभी बाकी है तो इश्क की बातें भी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट

दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर, अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थीं, मुश्किलें भी थीं, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

थी जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लव्स कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां, और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से

किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य

कैंसर का, या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना, या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना, या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा

से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी

वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत, तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रि प्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्योछावर कर देते हो आप।